0: चंदा नगो को आसाई
1: ना बंदा आसाई
0: कुपलंडा आसाई ओ चंदा नगो को आसाई
1: ना बंदा आसाई
0: अच्छी एमजी ना जा ओ चंदा नगो को आसाई
1: ना बंदा